इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, 7 अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है, 4 मिनट ओवर सेव स्टूडियो टाइट हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए आप मेल कर सकते हैं, उसी वेबसाइट की जरिए आप रेडियो SBS का एप पर भी आप एप कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए दुनिया की कोने कोने में हमारा ये प्रोग्राम अपना मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है। और हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डीएबे प्लस रेडियो के जरिए भी आप ये प्रोग्राम को सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह की तरह आज सुबह भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए हर सुबह ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है कि सुबह सुबह

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। और ये सुंदर भजन सालों से आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है हरिहरन की आवाज में। और हमेशा सुनने वालों इस भजन पर रिएक्शंस देते हैं कि काफी सुंदर भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम बस आरंभ किया जा रहा है। शुभ दिन आप सभी को बस पेश किया जा रहा है। शुक्रवार है 7 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अगला भजन की ओर और यह होगा सुंदर सा माता जी का भजन आज जबकि शुक्रवार का दिन है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा माता जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11 इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं और इसी तार की नंबर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। नरेंद्र चंचल की आवाज में ये

माता जी का भजन आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई और रेडियो SBS की जरिए सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल फोन की जरिए मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। उसके साथ डेआबे प्लस रेडियो की जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में। और आपको भी खबर किया जा रहा है रोजाना आपका नया दख हॉरोस्कोप ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर होता है, तो जब भी आप चाहे जाकर आप देख सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन पर रेडियो SBS का वेबसाइट पर। चले प्रोग्राम में शैलेंद्र भारती की आवाज में एक सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज जबकि शुक्रवार का दिन है 7 अगस्त 9 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह 7:30 बजकर

बंदे हम। शैलेंद्र भारती की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में, हम आपको ले चलते हैं अब की बार सुंदर भजन की ओर।

अब की बार सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी और रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे सुंदर सा आरती भजन की ओर जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए भी और उनके पूरा परिवार के लिए भी ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

चले प्रोग्राम में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा आरती भजन आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, और वो भी बाबू सुप्रियो और रेशमी की आवाज में।

गले लग गया। उदित नारायण एंड साधना सरगम की आवाज में ये गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। सुन बोलो शुक्रवार का दिन है और सुबह की ये प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से उदित

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म अब के बरस उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब के बार समीर कुमार एन सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम हाउसफुल।

चमकता हुआ कि ही सितारा, सितारों का सितारा, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सोनू निगम एंड

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म बेवफा, बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की।

सभी सिनेवालों से बांबे। चलिए फिल्म द बॉडी की ओर। श्रेया घोषाल की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। शुक्रवार का दिन 7 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जून का यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह की तरह सुबह भी आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी नगमे पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर और पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं तो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार। खूबसूरत गाना आज की शुक्रवार की सुबह के प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

Díky, já vás mi, Dana Bus program by píští gej a v sobí synovalu kýsi vaby. Radio SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में, अब की बार ये गाना लेकर। गाना कबूल है मेरी भीगी भीगी सी, सॉन्ग बाय द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म 1952 का रिलीज किया हुआ फिल्म, फिल्म का नाम है बाउजू बाउरा। उसी फिल्म का ये सॉन्ग पेश किया जा रहा है, ये गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद।

0: की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में बजी है प्यार की सहनाइया। अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की ओर।
1: देखिए क्या ढूंढते हैं,
0: और गाना का बोल है अपनी भी क्या जिंदगी है, मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

जिंदगी है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे मन्ना डे की ओर, मन्ना डे की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है आनंद, आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में।

आनंद पुरानी फिल्म आनंद का गीत पेश की गई सॉन्ग बाय मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार हम आपको ले चलते हैं फिल्म अभी

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में सौंभाई किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और एक काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में लता जी की आवाज में।

इसकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में अबकी बार तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। चमका चमका सुबह।

तथा जिनकी आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए काफी खूबसूरत गाना की ओर, मन्ना डे और लता मंगेशकर होगा आपकी बार प्रोग्राम में। मन्ना डे और लता प्रोग्राम में।

0: देखिए आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवास में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम सुजाता।
1: दोनों बातें एक ही आवाज में ऐसी खूबसूरती से समाती हैं और जो कुछ भी गाते हैं ऐसी सरलता से गा जाते हैं जैसे कुछ भी प्रयास ना करना पड़ा। यूं तो इन्होंने बहुत से गीत गाए हैं लेकिन ढूंढ लाया हूं ये गीत मैं तेरे लिए।

एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। किशोर कुमार एंड लता ने फरमाया आज की प्रोग्राम में ये काफी प्यार भरी गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और आपकी बार गाना होगा कितनी अकेली, सॉन्ग बाय द लेट लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी।

बांस में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तलाश कितनी अकेली। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: खासतौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और प्रोग्राम जहां जहां पर भी आप सभी सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS की जरिए दलित महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है फैशन। फैशन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में।

हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश की गए फैशन फिल्म का नाम था। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है ओ सनम तेरे हो गए हैं हम, मोहम्मद का नाम था। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है ओ सनम तेरे हो गए हैं हम, मोहम्मद रफी एंड लता।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। आशा भोसले एन महेंद्र कपूर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जबकि पुरानी नख़्मे, पुरानी फिल्मी गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तराखंड हॉलैंडी से ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले अब की बार सुनील दत्त का एक खास फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बप्पी लहरी एंड लता मंगेशकर, खास तौर पर मिथुन का फिल्म है, फिल्म सुरक्षा, और गाना का बोल है दिल था अकेला अकेला। सभी हितनक में सभी खूबसूरत प्यार भरी गाने, संगीत भरी रेडियो स्टेशन रेडियो SBS के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर एंड बब्बी लहरी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सुरक्षा। चलिए प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में द फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है। तेरे बिना

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

बस आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनालका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले, फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

में फिल्म का नाम शादी से पहले फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम भी पेश की गई तेरे बिना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। कुमार सानू एन सुनिधि चौहान प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

ये चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान, शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना आशा उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

गाना पेश की गए जावेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्या फिल्म का नाम अब की बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है।

टौरिया गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। ये गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका।

उदित नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: दिशा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है।
1: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले हम आपको ले चलते हैं मुकेश के बाद लता जी की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर के बाद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

सुन लो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए बहुत सी सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए बस भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा सुनने वालों अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए इसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं radio.sbs.nl।

ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई ढूंढे तुझको नए दीवाने रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में ये गाना जो पेश की गई शुक्रवार का खास दोपहर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस हम देख रहे हैं रेडियो SBS का ऐप के जरिए काफी रिएक्शंस आते हैं, ऐसे मालूम होते हैं। और हमेशा भी मालूम हुआ है कि सुनने वालों पुरानी नख़मे काफी पसंद करते हैं, तो बहुत से सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं। ब्रेडा शहर की अंदर में रिकार्डो गफूर खान भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। ब्रेडा शहर में रिकार्डो गफूर खान आपको एक शुभ दोपहर शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जिस तरह से मालूम है कि आप हमेशा ब्रेडा शहर में ये प्रोग्राम को सुनते हैं और खासतौर पर मेरा ख्याल से पुरानी नख़मे हमेशा आप सुनते हैं। वैसे ऐप पर आपने गाना की गुजारिश किया है फिल्म द ट्रेन का गीत किस लिए मैंने प्यार किया, तो चले गाना मिलकर सुनते हैं। लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है द मूवी द ट्रेन 1970।

Het is inmiddels 4 minuten over half 2 studiotijd. Hoe je hem? Studio K, telefoonnummer 030-262-6611. Aurice, targi nummer per. Hamesha bhiya, app kar sakte hain. Apna mobile telefoon per aap jaiye Radio SBS ka website per. Aur usi website ki zariye bhi aap hamara studio ki aur app kar sakte hain. Aur app ki zariye bhi aap tar kar sakte hain. Chale. सुनने वालों बस जोड़ तोड़ से ऐप कर रहे हैं, तार कर रहे हैं और गाना की गुजारिश किया है। तो वीकेंड नजदीक आ रहा है तो मैंने सोचा चले आप सभी के दिल हम बहलाए कुछ और सुनने वालों की मांगी हुई गाना लेकर के। आमस्टरडम शहर से श्रीमती बेया ने तार किया है और प्रोग्राम भी सुखद सुनते हैं और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम सालों से जहां तक हमें मालूम है सालों से बस सुनते हैं आमस्टरडम साइडोस में। तो आज की प्रोग्राम में गाना मांग किया है और होगा फिर से प्रोग्राम में लता जी की आवाज में।

साथी का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आम्स्टरडम सॉइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से बस पेश की गई है। शुभ दिन और अभी से शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अब की बार रोटरडम शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं। रोटरडम शहर से तार किया है रिया और रिया भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में सुनते हैं और खबर किया है कि आने वाले दिनों आने वाले सप्ताह उत्तराखंड शहर की ओर आने वाले हैं तो रेडियो SBS का स्टूडियो की ओर जरूर और जरूर आएंगे। ऑल दैट वेलकम हमेशा आपको स्वागत किया जाएगी। तो चले आपकी मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रोटरडम शहर की रहने वाली रिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। सौदागर फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। रॉक एंड रोल क्वीन।

रोटरडम शहर की रहने वाली रिया, रिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीते कि आप सभी ने गाना को सुना और काफी पसंद किया। फिल्म सौदागर का गीत जो पेश की गई आशा भोसले की आवाज में। सुन वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें, रेक्लाम, मृत्यु समाचार या मौत की खबर के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तार द्वारा, मेल द्वारा या तो हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए आप सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिल्म सौदागर के बाद फिल्म दिल दौलत दुनिया, उसी फिल्म का एक गाना पेश होगा किशोर कुमार, द मैन विद एवर ग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में। और आमसर दम शहर से आंद्रे तार किया है, कुछ देर तक तार पर बातें हुए और आंद्रे बड़ी ही खुश है कि आज शुक्रवार की दोपहर में सुनने वालों तार करके या ऐप करके अपना गाना को मांग कर सके है। तो इसी तरह से आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे एक गाना मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में। दिल दौलत दुनिया फिल्म का नाम है, ये गाना को सुनना चाहते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गई। फिल्म का नाम दिल दौलत दुनिया, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और गाना को सुनना चाहते थे आज के प्रोग्राम में आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सब ही सुन वालों की सेवा में पेश की गई है। आंद्रे आपको शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप भी रेडियो SBS का प्रोग्राम काफी सालों से बस सुनते हैं आमस्टरडम शहर के अंदर में, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स आप देते रहते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हमारा प्रोग्राम 2 बजे तक नहीं लेकिन 3 बजे तक पेश होगा। हाँ, तो मतलब होते हैं हम ये प्रोग्राम तकरीबन 3 बजे तक पेश करने वाले हैं पुरानी नख्मे, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। काफी सुनने वालों बस तार किया है और रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और गाना की गुजारिश किया है, तो हमने सोचा है चले आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड करीब आ रहा है तो सभी के दिल हम खुश करें 1 घंटा प्रोग्राम और बढ़ाकर। तार किया है स्टूडियो के अंदर बारंद्रेख्त शहर से। सुन वालों आपको मालूम होना चाहिए कि रोटरडम के आसपास में और देनहा के आसपास में काफी सुन वालों होते हैं जो डे अबे रेडियो के जरिए बस प्रोग्राम सुनते हैं। सभी को वेलकम रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुनते हैं जो यूट्रेक शहर से पेश किया जा रहा है, और हम सब जो है एक रेडियो SBS का फैमिली है। तो चले बारंद्रेख्त शहर से भाई प्रेमनाथ ने तार किया है, और कुछ दिनों से भाई प्रेमनाथ भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। तो आज की प्रोग्राम में जबकि सुना कि मौका मिल रहा है गाना मांग करने के लिए, तो तुरंत तार किया स्टूडियो की ओर। तो चले मिलकर सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म का नाम घराना। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो, ये कहते हैं भाई प्रेमनाथ बारंद्रेख्त शहर से ये गाना को मांग किया है।

0: एक बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम घराना, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। 1961 का फिल्म, 1961 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और गाना को मांग करने वाला था बारंद्रेख्त शहर का रहने वाला प्रेमनाथ। ये खास गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया है, जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए। भाई प्रेमनाथ, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और अभी से शुभ वीकेंड। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों, एक मिनट बाकी है 2 बजने में। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, हम अपना प्रोग्राम जो है आज शुक्रवार की रोज तकरीबन 3 बजे तक हम पेश करने वाले हैं, इसलिए कि कुछ ज्यादा सुनने वालों तार करके और ऐप द्वारा भी अपना अपना गाना को मांग किया है। तो अभी खबरें के बाद और भी सुनने वालों की गीत हम पेश करने वाले हैं। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

तो कोशिश कीजिए रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनने के लिए DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और मिड नीदरलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बहुत सी सुनने वालों है जो इन दिनों DAB के जरिए बस प्रोग्राम

आपको ले चलेंगे लता जी की आवाज में। हमारी एक सुनने वालों है जो इस वक्त गाड़ी में सफर कर रहे हैं और अपना फकांसी की ओर जा रहा है। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे अच्छी से सफर करना एंड नतुलकन हील फाइन फकांसी जहां पर भी आप जाने वाले हैं। मेरा ख्याल से आपने कहा है कि फ्रांकराइक की ओर जाने वाले हैं। अगर ऐसा हो तो हम यही कहना चाहेंगे फाइन फकांसी। और लीजिए आपकी मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाली है रोसाना। रोसाना गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में लता जी की आवाज में। प्यासा सावन फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

दत्ता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना और रोजाना निर्माण किया जो इस वक्त मोटरकार में सफर कर रहे हैं और हॉलीडे पर जा रहा है, फकांसी पर जा रहा है। एक बार फिर से रोजाना अनहेल फैन फकांसी एंड नतुलक रई फोर्सिग। 12 minuten over 2, Radio SBS का प्रोग्राम।

इस रेडियो स्टेशन को चला रहे हैं यूत्रे शहर के अंदर में एनन फिर तैयार एक ही नाम के साथ SBS एक नाम जो हर एक की जुबान पर है, हर एक गोरे लोग की जुबान पर है। SBS Live vanuit het hart van Nederland, vanuit midden Nederland. Dordrecht शहर में भी मीरा हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और मीरा एक गाना मांग किया है द माइटी मुकेश की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं मीरा की मांगी हुई गाना। दो दरख्त शहर की रहने वाली है

दीवाना माइटी मुखीस की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। दोद्रेक्स शहर की रहने वाली मीरा की मांगी हुई गाना बस आज की शुक्रवार की दोपहर का प्रोग्राम में बस पेश की गई है। मीरा को भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और अभी से शुभ वीकेंड। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना एड फिल्म हमरास, उसी फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुनेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, और ये गाना आज की प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी की आवाज में मांग करने वाली है। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला ने

और रेडियो SBS की जरिए ये गाना पेश की गई महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम हमरास, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना, तुम अगर साथ देने का वादा करो। और ये गाना, ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली थी और रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शीला आपको भी शुभ दिन, शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हॉलैंड देश के कोने कोने से सुनने वालों बस तार कर रहे हैं, ऐप कर रहे हैं, लेकिन जबकि हम देखते हैं हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी बहुत सी सुनने वालों रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को वेलकम और हर एक को बस खबर करते ही रहना। हॉलैंड देश का काफी पुरानी रेडियो स्टेशन है, 41 यार इसी महीना में रेडियो SBS का प्रोग्राम यूट्रेख शहर के अंदर में पेश किया जा रहा है। इन दिनों दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम सुनाई देता है। आमोसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाई भी अभी तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, और एक गाना किशोर कुमार की आवाज में बस मांग किया है, बिन फेरे हम तेरे, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

प्रिंस की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। दरहाट शहर का रहने वाला राज का मांगी हुई गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में, और गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। 11 मिनट व्यतीत हो चुका है सरे 2 बजकर और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार गाना जो पेश होगा काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा, लता और मन्ना डे की आवाज में, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना। अलमेर शहर से गाना को मांग करने वाले सरधानंद और हिल्दा, सरधानंद और हिल्दा अलमेर शहर से ये गाना एक दूजे के लिए बस मांग किया है आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत इस प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना दे और लता जी की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। और गाना को मांग करने वाले थे खासतौर पर अलमेर शहर के रहने वाले सरधानंद और हिल्दा। सरधानंद और हिल्दा एक दूजे के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना बस पेश किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हर एक काम काज के लिए। टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60। हर एक इन्फॉर्मेशन आप मेल द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ले सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम टेम्सड्रेव 237 यूट्रेक्ट शहर से बस पेश किया जा रहा है। 41 साल 41 यार रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक गाना लता जी की आवाज में पेश होगा, अभिमान फिल्म का गीत पेश किया जाएगी। और ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली है, देखा जाए इंग्लैंड इंग्लैंड से नाइला। नाइला हमारा प्रोग्राम इस वक्त इंग्लैंड में भी सुनते हैं और नाइला भी हमारा ऐप द्वारा तार किया और ये खास गाना मांग किया। अभिमान फिल्म का नाम, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर। अब तो है तुमसे हर खुशी बस अपनी।

अब तो है तुमसे हर खुशी बस अपनी। लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। अभिमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हैंगलांत की रहने वाली नैला का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। नैला आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है इसी तरह से सुनते ही रहना और इसी तरह से प्रोग्राम में हिस्सा लेते ही रहना। एक आखिरी सुन वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और एक आखिरी गाना जो होगा हमारा आज के ये प्रोग्राम का एक मांगी हुई गाना होगा दमाई की मुकेश की आवाज में और दनहाग शहर की रहने वाला दनहाग शहर का रहने वाला विनोद खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशली करमलाल दी फहार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएगेरे कान इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी बस आउट द फिल्म मरते दम तक एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवान जाने मन मेरे बाबूला मेरे बाबूला गजongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev is het volgend liedje in het programma Geetum Killeher.

तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कॉम्स गसोंगा दोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आर द फिल्म अजनबी एंड आर द फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

मुझे रंग दे, इसका सॉन्ग तो राशा भोसले एंकवा में द फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम तो सॉन्ग दो जगजीत सिंह। कल 14वीं की रात थी।

आपकी कशिश इस द फिल्म आशिक बनाया आपने एनिस गजोंगे दोर ही मेश रेशमिया एंड गजोंगे दोर राहुल मिश्रा कॉम्ट आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड तू ही है।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राप्त लीजिए खुशों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुशों दो जगजीत सिंह एंड कॉम दे सिकेर आर द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

सुनो बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।